0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव

0: शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का सीमित अवधि का खास ऑफर, हर दिल जुड़े भारत बढ़े, BSNL के साथ आगे बढ़े। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-180-1503 पर कॉल करें।

0: अभिजात मराठी आपली मराठी।
1: अभिजात मराठी आपली।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI

0: स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल

0: श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत।

0: नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा सात शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर नेहरू पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गाँव में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गाँवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरे सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the Ram

श्रोतेहो ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार, अश्विनी भावे, रीमा लागू, सईद जाफरी, किरण कुमार, फरीदा जलाल अशी तगड़ी स्टारकास्ट असलेल्या या चित्रपटात या सर्व कलावंतांनी जीव ओतून भूमिका केल्या होत्या।

0: हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं तनु वेट्स मनु इस फिल्म का गाना, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की, गीतकार राजशेखर, संगीतकार कृष्णा।

0: दोस्तों, आज जाने माने निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर का भी जन्मदिन है। विविध भारती परिवार उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता है। आप सभी जानते हैं कि महेश मांजरेकर, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सशक्त अभिनय किया, निर्देशन दिया और लेखन, यानी अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके किरदारों में गहराई है, अंदाज में बेबाकी है। उन्हें जन्मदिन पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनकी कला यूं ही पर्दे पर अपनी छाप छोड़ती रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संजू का गीत, आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, पुनीत शर्मा की रचना है और रोहन रोहन का संगीत है।
1: प्राण प्रिय
0: ये महेश मांजरेकर।

0: पहुंचे हैं।
1: बढ़िया।
2: तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि इस फिल्म में यानी संजू में महेश मांजरेकर ने एक छोटा सा कैमियो किया था।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
1: जी,
4: इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा वो हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय गीत की एक

0: 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल
3: Magazine stories. I want books.

जी तो दोस्तों, आज मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी जन्मदिन है और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला फिल्मों की उन शानदार अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सशक्त अभिनय की मिसाल कायम की है। उनकी फिल्म बॉम्बे हो, खामोशी हो, दिल से हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है और उनकी आंखों में जो भावनाएं आती हैं, अभिनय में एक खास सहजता और उनकी जो हंसी है वो आज भी हमारे दिल में बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और यादगार पहचान है और हम सभी आज भी उनके अभिनय के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कंपनी का गाना, आवाजें आशा भोंसले, सपना अवस्थी और सुदेश भोंसले की। नितिन रेकवार के बोल हैं, संदीप चौटा का संगीत।

0: आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

ये आवाजें संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैप्टिस्ट की फिल्म का नाम है मर्डर टू। सईद कादरी के बोल और संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर का संगीत।

दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार के सभी लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और रोमांटिक किरदारों से लेकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर अंदाज को बखूबी निभाया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का गीत, आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आकाशवाणी से अमरावती केंद्र है एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज वर।
2: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
3: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी।
2: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

गीत में दो प्रमुख आवाजें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक केजे येसुदास की और दूसरा शास्त्रीय स्वर था हेमलता का। हेमलता को इस गीत के लिए 1977 का फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड दिया गया था। हेमलता 70 के दशक की प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। जहां तक इनके अवार्ड से संबंधित बात चल रही है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 1977 से 1981 के बीच 5 बार नामांकित किया गया था।

पार्श्वगायिका का हेमलता का जन्म हैदराबाद में मारवाड़ी भट्ट परिवार में हुआ। बचपन इनका कोलकाता में बीता। पंडित जयचंद भट्ट और अंबिका भट्ट के यहाँ 16 अगस्त 1954 को आपका जन्म हुआ। आप शास्त्रीय संगीत से आरंभ से ही जुड़ी रही हैं। हेमलता का मूल नाम लता भट्ट है। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। एक मील का पत्थर जिस गीत को हम कह सकते हैं, जिसने हेमलता को लाइमलाइट में लाया, उस गीत को सुनते हैं।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों पर हमने कई गीत सुने हैं जो हेमलता ने गाए हैं, और इन गीतों से ही हेमलता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

1978 की है। इस साल अखियों के झरोखों से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नंबर 1 पर था। इस गीत को चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यूं तो हेमलता ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, जसपाल सिंह जैसे गायकों और आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, चंद्रानी मुखर्जी, उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं के साथ कई गाने गाए हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेमलता ने केजे येसुदास के साथ कई लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं।

1990 के दशक में दूरदर्शन ने हेमलता और येसुदास को अपने श्रोता दर्शकों के लिए गाने का आमंत्रण दिया, जिसे हेमलता और येसुदास ने गाया। तिस्सा नदी सी और एक गाना था, साथ जो तेरा यूं पाया। ये दोनों ही गाने दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे और काफी लोकप्रिय भी हुए। आइए अब आपको हेमलता की मधुर आवाज में सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का।

रविंद्र जैन के अलावा भी हेमलता के मधुर कंठ का अपने गानों में अधिकतम उपयोग किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना ने। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गाना आपको सुनवा।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में हेमलता ने कई गीत गाए हैं, जैसे जीने की राह, आप आए बहार आई, काली घटा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजपूत और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में। लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, ये दो आवाजों का एक अद्भुत मिलन है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमलता का।

अब आइए बात करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में हेमलता के गाए गीतों की। विश्वास, रुस्तम, राजमहल, मुकद्दर का सिकंदर, ज्वालामुखी और बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में। आइए मुकेश के साथ हेमलता के गाए हैं इस गीत को सुनते हैं।

फिल्मी गीतों के अलावा भजन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हेमलता का गहरा जुड़ाव है। आपने कई टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया। आपके विषय में ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भारत की 14 बोलियों के लोक गीतों के विषय में मौलिक रचनात्मक अभिनव शोध भी किया है। आइए अब इस कर्णप्रिय स्वर में सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना।

इनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, पर परंपरागत रूप से इनके यहाँ लड़कियों को संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पर बचपन से ही इनका रुझान संगीत की ओर था। जहां कहीं मौका मिलता वहां वे लुक छिप कर गा लेती थी। स्कूल में गाया, दुर्गा पूजा में गाया। एक बार कोलकाता में एक बड़ा संगीत का आयोजन था जिसमें लगभग सभी बड़े गायकों की शिरकत होनी थी, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार। ऐसे जलसों में इंटरवल ना देकर स्थानीय प्रतिभाओं से फिलर के रूप में गायकी की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। एक गाने की पेशकश थी, पर श्रोताओं को बेबी लता की गायकी खूब पसंद आई और इन्होंने भी जमकर गाया। उम्र तो छोटी ही थी पर प्रतिभा बड़ी। पिताजी को भी खूब पसंद आया इनका यह गाना, जो कभी इस बात के पक्षधर थे ही नहीं कि लड़कियों को गाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेबी लता को तो फिल्मों में गाना चाहिए, पर पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा, फिल्म नहीं, अभी इसे आता ही क्या है, शास्त्रीय संगीत सीखे। और इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोष जी के यहाँ हेमलता को संगीत सीखने के लिए भेजा। रियाज किया और हेमलता संगीत सीखने लगी, रियाज करने लगी। लेकिन फिल्मों में गाने का क्रेज तो था ही, और वैसे भी पिताश्री के जो साथी कलाकार थे वो मुंबई में ही थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान। इनसे उन्होंने कहा कि मिलना भी हो जाएगा। और उनकी बहन जो है कमला पंडित, वो भी वहां रहती थी, और उनका ये मानना था कि 15-20 दिन का मुकाम करेंगे, इस बीच में जो है इस बच्ची की गलतफहमी कम हो जाएगी। 15-20 दिन में ही इन्हें वहां बुलावा आ गया, और ऐसे ऐसे संगीतकारों का नाम था उसमें जिन्हें हम सभी लीजेंड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला पहला ऑफर आया था वो उषा खन्ना और कल्याण जी आनंद जी का था, और कल्याण जी आनंद जी ने विश्वास फिल्म के ले चल मेरे जीवन साथी इस फिल्म के लिए गवाया। गीतों की ताजगी, भक्ति गीतों की सुगंध को लिए हेमलता ने कई गीत गाए। कहना ना होगा कि इनके स्वर में लोक और भक्ति गीतों को सुनना एक अलग ही अनुभव है। कई गीतों और भावों को हेमलता के स्वर ने जीवंत किया है।

फिल्म संगीत के संसार में कई तारे हैं जो अपनी कला से चमकते हैं। इस आकाश के अस्तित्व तक इनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। ऐसी ही एक कलाकार हेमलता ने अपनी आवाज और गायकी से आसमान को संगीतमय ढंग से रोशन किया।

0: आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायिका हेमलता पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: खोड्या साऱ्या सोडून देर खोड्या साऱ्या शिडात शिरले अवखळ वाऱ्या शिर शिडात अवखळ वाऱ्या
1: शिर शिडात अवखळ वाऱ्या
0: धनी धरणीला गलबत टेकवा धनी धरणीला या गलबताला टेकवा
1: तिच्या गोवाला कोकण दाखवा
0: गुमू माहेरला जाते हो नाखवा
1: तिच्या गोवाला कोकण दाखवा
2: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर सिर्फ ₹1 में पाएं 1 GB डेटा रोज 100 SMS रोज अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता सीमित अवधि का खास ऑफर हर दिल जुड़े भारत बढ़े BSNL के साथ आगे बढ़े अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-180-1503 पर कॉल करें
3: श्रोते हो पुढचा स्वर आहे पंडित वसंतराव देशपांडे यांचा वारा कांत यांचं हे गीत आहे संगीतकार यशवंत देव

0: Weapons Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीबी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीबी एक्ट कहीं ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीबी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए, तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रो बोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है।

0: या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शन है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शन है और क्या ये प्रोटेक्शन जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शन को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। We slip into a short break.

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence, Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आते हैं, उनकी देखरेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगे तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराती है इस बात को लेके कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे में निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है तो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

0: करती होती है, कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में। कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फ्लैग करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारी वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत ईजिली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन पर रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती है, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका सिंगल हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो नहीं है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanjay Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात न्याय विभागाद्वारे प्रायोजित कार्यक्रम। आज या कार्यक्रमाचा भाग 8 आम्ही प्रसारित केला। आम्ही आकाशवाणीच्या अमरावती केंद्रावरून बोलत आहोत।
3: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
4: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी,
3: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।
5: आकाशवाणी अमरावती,
6: स्वरांची गुंफण, संगीताची मैफिल,
5: ज्ञान आणि मनोरंजनाचा

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओ, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक पर जो आज हमने इबारत पोस्ट की है उसे पढ़ा है और उस हिसाब से अपने गीतों के जो उनके सिलेक्शन हैं उसको भी बताया है हमें। वैसे आज जो बातें हमने की हैं उसके मातहत बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे हमें भेजे हैं। सावन का जो ये उजाला होता है श्रोताओं, यानी दिन की अगर बात करें तो जितना खूबसूरत होता है रातें भी उतनी ही मनभावन होती हैं, जो दिन की भाग दौड़ से दूर थकन के एहसास को दूर भगाती हैं, अपनी आगोश में हमें ले लेती हैं। कभी गीत कभी गजल सुकून देते हैं ऐसी रातों में, कभी चांद सितारे हमसे बातें करते हैं, फूलों कलियों की खुशबू के साथ साथ भीगे सावन की रातों में कुछ खास यादें आपके मन में दस्तक देती होंगी। बरसात की कोई यादगार रात, जब जिंदगी के किसी सफर में कोई अजनबी बना आपका हम सफर और आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया रजनीगंधा के फूलों की महक की तरह। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में सावन की बरसती रातें, कुछ गीत कुछ यादें हैं हमारी हम सफर। और अब आपसे बता दें जो इबारत हमने पोस्ट की है ये कुछ इस तरह से है। तुम्हें याद है वो बारिशों की रात, जब सावन के गीत की तरह समा सुहाना था, एक राह के हम दो अजनबी थे, हवाओं ने जब आपके रुख से पर्दा हटाया तो लगा जैसे बैरागी भंवरा नरगिस के फूलों के दामन में आधी रात कोई कविता सुनाता हो और कहता हो तेरा मेरा प्यार नया है। आज याद आई वही बरसात की रात, जब जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग उठी थी, एक अनदेखी निगाह से दिल ने कहा था ऐसे तो न देखो। उस रात बादलों में कयामत के काजल थे, हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे, शायद प्यार हुआ था इकरार हुआ था, छतरी तानी और दोनों साथ चल दिए, दिल ने सच ही तो कहा था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं और खोजिए उन शब्दों को जो हैं आज की इबारत में शामिल। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ, जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं? उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था? एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद और प्रीत से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वो रात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे, एक राह थी, थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सादे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बन जाते हैं। तो यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला

बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार हैं?

ये गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओ? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं, तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बरसात में तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना, या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों ही परिस्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं। तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है, जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओ कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनकी यादों को आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं और हमारे

श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया, लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताज़ा करनी ही हैं। साथ ही नरगिस का जो फूल होता है, क्या आपने उसे देखा है? कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है?

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती हैं कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है, लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में

दिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर जिम जिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है, यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था, बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी, मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया, मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना

जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद है। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है। और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओ, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसू। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अलनीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं, पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आई।

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखा कर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है, और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं। और भी उन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को

अंधेरे से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन।

अरुण गोविल और जैना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था, आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है बारिश की एक

नंदा और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में श्रोता? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों तरानों का नया कारवा और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे। ये फिल्म

हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूँ और वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वादे बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में जगह वृंदावन गए, वहाँ किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारे मन पर नेह का जो पुल बनाती है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

सावन की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर, आप सुन रहे थे नींद हमारी ख्वाब। तुम्हारे इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a 6th World Championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win World Championship medal in the mixed doubles. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first Test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first Test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third Test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है. एनटीए ने बताया कि

0: तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता

0: सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता

0: संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

0: किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नवमी। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म में मुकेश की आवाज आपने सुनी। शैलेंद्र के बोल थे एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी।
1: से मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहत नामा।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया आशा भोसले ने। शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियां।
1: सावन का महीना पवन करे सो

बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मिलन फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा जिला।

दुर्बार महाराष्ट्र के का ये पत्र है। प्रकाश शील के तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा, और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुन्नताद अकोले से, राजेश प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। सच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है, दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता है।

की रमन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं। सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं। मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य। अब, अब, अब,

खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की साहिल ढानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे, हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदीली खां के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है और शाहिद दीपक और रुषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से, गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है। मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओ कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए भेजते हैं। इसी तरह से अपने पत्र और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण चंद, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार? अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई है।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता टूट फूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह को आ रहा है। हाय हाय हाय, कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी।
2: अरे रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हरदम उदास रहती है। कोई कोई सी चांद सा कोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: यही तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उधार चल। उधार चल।
1: हाँ कृपा
2: भाई, तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सुन तो
2: बोलो ना। तो ऐसा करो तुम्हें कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूँ।
1: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
1: बताओ
2: बताओ
1: बताओ
2: बताओ। अरे
1: देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवा दो।
2: जरी के काम की साड़ियाँ?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
2: साड़ियाँ जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा नुस्खा है।
1: महंगा?
2: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उधार चंद भाई उधार चंद, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
2: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई सारी जेवर पर कमाई समझो उसकी आफत आई।
1: तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
2: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
2: तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
2: शादी? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है?

0: नहीं, अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बात तो की थी।
1: हाँ, एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो।
1: मैंने
0: कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है। अब रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है, मैं दुलारी को भेजवा देता हूँ।
0: भेजना जरूर। चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय आय,
2: चाचा जी,
0: हाथ लगा दी तुम आते।
2: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे बाबा, शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी,
0: कैसे ही बड़ा किया।
2: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
0: है? किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। पर मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चले।
0: प्यार हो गया, शादी करेगी। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में सुहागा तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती,
0: अरे बिलाड़ी बोलो कुछ।
2: दुर्भाग्य,
0: अरे बताती तूने क्या हुआ?
2: रूपा बहन,
0: क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
0: अच्छा, तो
2: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे लिए अब एक ही रास्ता है, मौत।
0: और वो नीचे कूद गई?
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों क्यों?
2: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
0: गई। मूर्छित हो गई? मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ,
2: चली जाइए।
0: तब तक रूपा को देखो, मैं अभी डॉक्टर।
2: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
2: हाँ,
3: अब क्या होगा, डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी?
2: चिंता न करो, चाचा जी है पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
3: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा।
2: चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
0: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
3: चाचा जी, रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं।
4: मैं डॉक्टर बोगस चंद।
0: हाँ बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
4: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ, और मैं हूँ

0: मैं नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
1: है। किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहो तो मुर्दे में जान डाल लू और चाहो तो जिंदा को
2: मरूंगी। अरे भाई मैंने कहा आपने मुमिया में चुप हाथ बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख ले।
3: क्या तकलीफ है आपको?
0: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
1: अरे मैं तो चेहरा देख कर नहीं बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
2: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
0: समय धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता।
1: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
2: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। दिलाड़ी बेटी
4: जी, चलिए
2: इन लोगों को ले
4: जाइए। आइए आइए
2: आइए। वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
3: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
2: बॉडी
3: में काफी फॉरेन मैटर है।
2: क्या मतलब हो जी? पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
1: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी। इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
3: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी।
5: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
2: अच्छा,
5: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
2: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। पता कौन बेटी को देख लो।
3: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मुरानंद जी।
5: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
1: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
3: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
5: अरे क्यों मिथ्या खतन करते हो? जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं, हमारा औषधालय भी तो वही है। दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते
3: हैं। और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
5: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
1: अरे भाई,
5: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
1: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ। एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
5: अच्छा,
1: और धोबी चंगा हो गया।
3: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
1: जानवरों डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
3: गधों का इलाज करता हूँ।
5: लीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
2: आप लोगों ने क्या किया?
5: देखिए, रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं।
2: अच्छा,
5: असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बच गए नहीं जाता।
2: तो जल्दी कोई इलाज
5: बताइए। आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
3: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
5: और अपनी भी तो कहो
6: सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
1: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
5: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम जी। हाँ, ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
2: मगर हकीम साहब, मैं नहीं, मेरी बेटी।
3: तो क्या हुआ? एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
5: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
3: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते हैं।

0: सुनिए हाँ सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस, और तशरीफ ले जाइए
1: के लिए दवा
0: और भी ला जाइए। उन लोगों को भी जाइए, खत्म आ जाइए, चल जाओ चल जाओ।
2: क्या बताया उन लोगों ने?
0: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
2: मैं तो पहले कह रही थी
0: लगता है मेरी रूपा को मर्द कोई दूर कर नहीं पाएगा।
2: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं। एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
0: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्यों ताक रही है, जाके जल्दी से बुला ला। फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
2: मैं सब पक्का कर
0: दूंगा,
2: अभी गई और अभी आई।
0: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी आया। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर जाएगा, न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
1: अरे भाई कमाल डॉक्टर फोकस करने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
0: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
1: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
0: क्या करूं बताओ।
1: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
0: अपनी बकवास बंद करो उदास चंद्र, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
1: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें?
0: तो तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो कि नहीं? बोलो करते हो कि नहीं?
1: हाँ,
0: तो अपनी दुकान का रेतिया माल मुझे भी आना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
1: हाँ, बोलो।
0: मेरा नाम भी कृपा चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
1: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
0: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
1: अब ठीक है, अब मुझे क्या?
0: हाँ हाँ जाओ जाओ, दौड़ कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
2: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
3: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
2: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइया हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
3: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो?
2: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें। बस
3: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज।
0: अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
2: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
0: अरे ये डॉक्टर है
2: क्यों?
0: एकदम छोकरा
3: श्रीमान जी।
0: ये क्या इलाज करेगा?
3: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
0: अच्छा?
3: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
0: ये क्या बला है जी?
3: ना मैं सुई लगाता हूँ। अच्छा? और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
0: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
3: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
0: अच्छा
3: जी हाँ।
2: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
0: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब देख लीजिए।
3: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
2: मगर वो तो बेहोश है।
3: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
2: अभी लाई अभी लाई।
0: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
3: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
0: मगर डॉक्टर साहब
3: जी,
0: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती।
3: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए मरीज आ गई।

0: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
0: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: अच्छा चाचा जी आइए हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
2: मेरी आंखें
1: डॉक्टर क्या
2: अरे चाचा जी रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: तो क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
0: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आप पहले से तो ठीक लग रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी रूपा फोन ले जा, जा ले।
2: अच्छा अच्छा,
0: देखिए दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
1: विचार है।
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुआ रहा हूँ।
2: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए डॉक्टर।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
0: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए।
0: देखिए शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि
0: हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ ये समस्या।
1: वही वही ना
2: डॉक्टर साहब, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है लेकिन
2: अरे लेकिन लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई।
0: देखिए इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब आप कृपा करके हमारी विनती मान ले, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं भी रूपा को
1: डॉक्टर आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
1: गुड गुड।
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही सही बिल्कुल सही।
0: नाटक सुखांत हो मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छी बेटी, ऐसे नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या सच है पिताजी?
1: पसंद है
2: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
2: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो, अरे सुन तो बिलाली, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
2: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है जाओ, जाओ। बेटी बेटी अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना?
2: नहीं लेकिन
1: बेटी।

0: ऐ जिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
1: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़ रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
2: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
0: ये तो ठीक है
2: जजमान, मैं कराऊंगा ब्याह।
0: लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
2: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो जजमान है। कहा है ये संसार जो है ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता है। तो जजमान वर वधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
0: जी हाँ बिल्कुल।
2: तब ठीक है, तुम ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आस पास फेरे लगा लो जो है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। समझ लो यजमान, हमारे भी पल गई है। सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। हाँ यजमान, अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
0: जरा मेरी बात तो।
1: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
0: पक्का होना चाहिए बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी जुग जुग जी।
3: यानी कि चट मांगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर।
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम बैठो। अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी दक्षिणा तुमने जाए जो है जो कैसी दक्षिणा? शादी तो
1: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
0: एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए। मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा देना। अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान? मैं जाता हूँ।
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रूपा।
5: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
0: ये क्या मजाक है? देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरवन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
3: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर? यानी कि
4: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
3: हाँ भैया कृपण चंद गए।
1: जाने भी
3: तो जाने तो क्या हुआ?
0: उदाहरण के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। उदाहरण ये डॉक्टर था, डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा। उदाहरण मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। तुलारी से पूछ लो, तुलारी क्या बात है?
1: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है,
3: ठीक है,
1: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना पड़ा।

0: नाटक
1: भाई कृपाण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
0: भगवान ये क्या हो गया, मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। अरे अरे भाई उधार चल।
1: हाँ कृपाण चल।
0: अरे संभालो।
1: हो गया।
0: अरे चक्कर
1: चक्कर चक्कर।
0: अरे अरे चक्कर
2: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मौलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी। जी,
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है। और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती है, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहाँ आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे, पर जैसे चौथी क्लास के

0: बाद मैं 5वीं क्लास में थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर।
1: जी, सुंदर नाम है।
0: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात है।
0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो
1: जी,
0: तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह,
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह
0: तो
1: जी,
0: मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे।
0: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी की या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है,
1: जी,
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है। मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी,
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और
1: जी
0: वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर की दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाई पत्रे की शेड था,
1: हाँ,
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं,
1: घुस
0: बकरियां
1: जाते
0: हैं,
1: थे।
0: वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे हैं।
0: साफ करके उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे बरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग,
1: जी, तो
0: जिसको
1: यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में आ
0: नहीं,
1: रही।
0: मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं
1: बिल्कुल,
0: अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंदली आते हैं, ये आता है, वो आता है, तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को

0: ही करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूर से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरी सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गाँव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

से बोलो क्या होता है।

0: है।
1: दीदार
0: तकदीर।

0: पावन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनेक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़ जी, जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है जी, नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूढ़ के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूढ़ है, जनाबाई ने लिखे भारूढ़ है, तुकाराम जी ने लिखे भारूढ़ है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूढ़ है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनेक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शाल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह,
1: बड़ी बड़ी मूछें है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे हैं और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूढ़ याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूढ़ मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूढ़ मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
0: वाह,
1: वहाँ एक तरीके का आपने एक भारूढ़ गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूढ़ के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं हार जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो हो, पूरी रात,
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूड,
1: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे वाह,
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा, ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए, जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार

0: पर है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो भारूड वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया आपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा।

क्योंकि उनके पास यहां पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा, तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया क्योंकि चाचा साथ में है, तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं भीड़ जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब यह है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर भीड़ में मैंने आठवीं से

0: एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है, छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली।
0: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है। पूरे जिले के गांव में 3-4 कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना। तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4-4.5 हजार स्टूडेंट थे। दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में, बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहां 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है। पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो
1: जी,
0: वो और भी बढ़ गया। वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है
1: जी।
0: 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड़ शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड़ नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: शुरुआती याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो है उस समय के पॉपुलर हीरोइंस है, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये,
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में, अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे और टिकट निकलने वाले, तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो निकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहाँ एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी,
0: लड़की बने थे,
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया,
0: ओ
1: पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का, पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है, वहां नहीं है ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं, जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
0: जी,
1: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है, पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है, जब कॉलेज में आया दो तीन साल

0: गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और ढाई आकर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं, मैं नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर, ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे,
1: जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया, और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली,
1: जी
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना, पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी, यहां तक कि यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: आपने
0: जी
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी,
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना
0: मुगले
1: सुनते हैं,
0: आजम का गाना सुनते हैं,
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना
1: क्या,
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी ना किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करनी आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक।
0: जी जी जी, गैदरिंग का।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहाँ। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की 15 दिन की 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था वो, फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी।
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए। अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सब से जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ, ओ, ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिन कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोड़स प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्रिम्बक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर की हैसियत से या एक एक्टर की हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा रामराज्य।
0: ओहो,
1: रुकिए राम।

0: आज आ रहा है। ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले है दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबाराम राजे थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक जी। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके, एनएसडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबील दास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कह रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला, जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहाँ किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी,
0: रे,
1: मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप
1: मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड बैकग्राउंड
1: यूनिवर्सिटी।
0: लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड, और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेद सा गोंदड़ी एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते
0: वाह,
1: थे। एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपए का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा। अरे
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
0: बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपए का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था। अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी लेके गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया। और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: यार रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनना,
1: यार।
0: दिल से।

0: वो कभी मुस्कुराकर हाल पूछती है तो कभी मेरी खामोशी को भी पढ़ लेती है। समझ नहीं आता ये बस अपनापन है या वो मेरे दिल की आहटें सुन लेती है। उसकी नजरों में कुछ तो राज छिपा है जो हर मुलाकात में थोड़ा और खुल जाता है। दिल कहता है ये मोहब्बत है, पर उसकी खामोशी हमेशा उलझा देती है और दिल में एक ही सवाल बार बार उभर आता है।
1: यूं ही तुम

मैं सोचता हूं क्या तोहफा दूं उसे जो उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर ठहर जाए। फूल दूं तो मुरझा जाएंगे, चांद दूं तो हर रात बदल जाएगा। फिर सोचा अपनी धड़कनों की स्याही से कुछ अल्फाज लिख दूं उसके नाम पर, या फिर वफा की खुशबू अपनी हर खुशी उसके नाम कर दूं। मेरे पास सबसे कीमती मेरा दिल था, तो आज उसी को करता हूं नाम तुम्हारे। दीवा

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। जब आना मेरे पास तो अपनी आंखों में थोड़ा सा इश्क और ढेर सारा नूर लाना, होठों पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर मेरी धड़कनें मुस्कुरा उठे, और हाँ एक वादा भी साथ लेते।

कि हर खुशी में मेरा हाथ थामोगे और हर मुश्किल में मेरा साथ निभाओगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर मुलाकात अपने आप में सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है।

कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाते हैं। वो दिल से निकलते हैं और सीधे रूह तक पहुंचते हैं। मैंने तुम्हें देने के लिए ना सितारे तोड़े हैं, ना ही चांद चुराया है। मैं तो बस अपना दिल, अपना अटूट भरोसा और उम्र भर की सच्ची मोहब्बत लेकर आया हूं। दुनिया

दिल का नजराना पाकर मन मयूर नाच उठता है। गोरी के पैरों की पायल भी जैसे मधुर गीत गाने लगती है। लबों पर अनकही मुस्कान के फूल खिल उठते हैं। दिल की हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाने लगती है। हर मौसम सुहाना सा लगता है। हवाओं में किसी की मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है और सिर्फ पायल ही नहीं, पूरी जिंदगी प्रेम का गीत गाने लगती है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ दर्शन रावल की थी। गीत के बोल गुरप्रीत सैनी के और संगीत रोचक कोहली और शरण रावत का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पहेली से। आवाजें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और साथियों की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एमएम करीम का।
1: ये है विविध भारती। विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू किया है महा से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत की रचना जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म मुसाफिर से। आवाज़ें सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा की थी। गीत के बोल देव कोहली के और संगीत विशाल शेखर का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बे ख्याल हो
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म यार यार टू से। आवाज़ सचेत टंडन की थी। गीत के बोल मनन भारद्वाज और मीराबाई के, संगीत मनन भारद्वाज और नुसरत फतेह अली।

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉक्टर पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की।

0: ये थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक जुंजवारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।

चाहा तो ये दिल्ली।

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना, फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से आवाज़ें अलका याग्निक और अभिजीत की थी। गीत के बोल इब्राहिम अश्क के और संगीत राजेश रोशन का।
1: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

करना माना, लटके रे उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लगी सगन समाधि प्रेम भंग चढ़ी अंग

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाज़ें हरिचरण शेषाद्री और श्रेया घोषाल की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला वर्षा चौमासा। इसमें कलाकार होंगे गायिका शोभा मुद्गल। इस कार्यक्रम का 16वां भाग आप सुनेंगे, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र एयर वाइस मार्शल सुशील विवियन पार्कर पर आधारित कार्यक्रम होगा। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साज और आवाज। गिटार पर होंगे शोमू सील। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कंगन, लेखन ब्रिजमोहन का, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। रात 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक। समाचार संध्या 8:45 पर होगा। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री राखी को, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। विविधा कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 11 बजे। ये थी झरोका के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। छह बजकर 35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस का 283वां भाग। 6:45 इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का पहला भाग। कलाकार होंगे पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हम हैं राय प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसमें आप सुनेंगे अभिनेता सचिन पिलगांवकर को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पिटारा। इसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर बामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। रंग तरंग कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुत करता अनुशी पाठक। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे। कार्यक्रम पिटारा आप सुन सकेंगे शाम 4 बजे। इसमें आप सुनेंगे सेहतनामा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षद राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबेर खान की।

शाम 5 बजे छायागीत का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक का पहला भाग, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। आप इसमें सुनेंगे फिल्म एक ही फिल्म से गीत 1942 अ लव स्टोरी। रात 8 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हवा महल। इसमें आप सुनेंगे झलकी शाही दावत, लेखन पीवी राव का, निर्देशन साधना भारद्वाज। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम आपके लिए आपको सुनवाएंगे रात 9 बजे। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, निर्देशक डेविड धवन पर आधारित। ये कार्यक्रम होगा प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छायागीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत कल और आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म ओ माय गॉड टू से। आवाज़ हंसराज रघुवंशी की थी। गीत के बोल कबीर शुक्ला, हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स के। संगीत हंसराज रघुवंशी, राही और डीजे स्ट्रिंग्स का।

0: श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म भैरवी से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौड़ की थी। गीत के बोल अमित खन्ना के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

संगीत सरिता।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही है कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: मित्रों नमस्कार। ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शुभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्यौहार आते हैं, व्रत त्यौहार, जिसे हम कहते हैं कि तीज त्यौहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्यौहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शुभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया
1: जी
0: था,
1: जी हाँ,
0: और नागपंचमी भी होती
1: जी
0: है
1: जी,
0: और रक्षाबंधन भी तो होता
1: जी
0: है
1: जी।
0: तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसके काफ़ी पद मिलते हैं, और एक प्रस्तुत करना चाहूँगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस चीज को गाना गाने का प्रयास है, और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे, हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ द्योस सलून्यो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब
0: मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है,
1: लड़ी उन्होंने गुथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाठ के फुंदना कमल नाल मनु मधुप लगेगर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लयहो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुस्कन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है।
0: इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ।
0: तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई
1: है, उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी
0: जी, जी। और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई। तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक
1: वो भी है। और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे भाई के साथ साथ भाभी को भी लूम्बा नाम की एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है। उसे कुछ लोग लूम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लूम्बा भाभी को भी बांधा जाता है
0: जी। तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी, इनके हाथों में राखी बंधी है। सुनाइए ना पद।

0: शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब
1: बिल्कुल
0: तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षा काल में होता है, क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ
1: जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमति लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो, जहां तहां ते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत, निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नैन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत, लय लय छिरकत दूध दही घृत, हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चढ़ रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया।

रोरी तिलक दुकूल सुभूषण नंद सबन पहरावत, और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर दास बधाई पावत। वाह।

0: श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में अभी आपने हमारी श्रृंखला वर्षा चौमासा की 16वीं और आखिरी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रही थी प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक की थी, तबले पर संगत अनीश प्रधान की, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहायिका विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त देशाची आदरांजली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची विदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना आजपासून लागू. पालघरमध्ये नालासोपारा इथं 11 जणांना अन्नातून विषबाधा. आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात दुसऱ्या दिवसाखेर भारताच्या पहिल्या डावात 9 बाद 460 धावा. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: पार्कर ने कमान अपने हाथ में संभाली और तुरंत हेडक्वार्टर में सूचना दी. इस पूरी बात में उन्होंने सच बताते हुए सारी बात सामने रखी. उनकी सच्चाई ही थी जिसने उन्हें वापस भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाने का मौका दिया. कुछ 6 महीने की सजा और 200 रुपए के जुर्माना भरने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट की कमांड दी गई.

हम देखते हैं कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहला कदम बढ़ाते ही गिर जाता है। गिरने के बाद उठने के कारण ही चलना सीखना संभव होता है। लेकिन बड़े होते होते हम ये सबक भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पहली ही बार में सफल होना चाहिए, वरना हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारे जवानों के साथ ऐसा नहीं है। वो कड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरते हैं और खुद को लगातार मांझते हुए हर दिन एक नए उत्साह को दिल में जगा देते हैं। आप ही सोचिए, आप और हम में से अगर किसी को प्रशिक्षण के पहले ही दिन जान से खेलना पड़े तो क्या हम वापस जाने के बारे में सोचेंगे? लेकिन ऐसा किसी जवान के साथ हो तो वो ना सिर्फ वापस जाएंगे बल्कि अपनी वीरता से देश का गौरव हासिल करने का मौका भी नहीं छोड़ेंगे। अपना 20वां जन्मदिन मनाने से कुछ हफ्ते दूर पहली ट्रेनिंग के दौरान ही एयर वाइस मार्शल सेसल विवियन पार्कर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।

दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल ससल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। कोई भी नौजवान जब सिपाही बनने का सपना लिए जाता है तो उसके दिल में एक अलग ही जज्बा होता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का मादा तो रखता है, लेकिन ट्रेनिंग के दिन आसान नहीं होते। फिर जब पहले ही दिन जान पर बनाए तो क्या किया जाए, आप और हम क्या करेंगे ये तो पता नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन जो ससल विवियन पार्कर ने किया था वो काबिले तारीफ है।

भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल ससिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में ससिल विवियन पार्कर टेम्पेस्ट 2 एक एयरक्राफ्ट में सवार थे और उन्होंने देखा कि फ्रंट पैनल खुल गया है और वहां आग भी नजर आ रही है। उन्होंने तुरंत एयरबेस में संपर्क किया, लेकिन जवाब आने तक रुकने का समय उनके पास है या नहीं वो ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बाहर निकलने के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुरक्षा के जो तरीके उन्हें सिखाए गए थे वो अपनाते हुए वो दो बार तो सफल नहीं हुए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और आखिरकार एयरक्राफ्ट से बाहर फेंका गए। उनके पास पैराशूट तो था, लेकिन उनके दोनों जूते इस कोशिश में एयरक्राफ्ट में खिंचा गए। जब वो जमीन पर नीचे आए तब उनके दोनों पैरों में जूते नहीं थे। कुछ जख्म, थोड़े जलने के निशान और पैरों में चोट के साथ वो नीचे उतरे और कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक होकर एक बार फिर आसमान में हवा से बातें करने के लिए वो तैयार थे। आखिर यही तो वो साहस और जज्बा है जो हमारे वीर सैनिकों को एक मिसाल बनाता है।

एयरक्राफ्ट चालकों को समय समय पर कई काम करने होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब 1970 में वो कुछ साथियों के साथ नेपाम टैंक छोड़ने एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस गए। इसके लिए एयरक्राफ्ट के एक विंग में दो और दूसरे में एक या दो टैंक रखकर ले जाया जाता है। आसमान बादलों से भरा होने के कारण नीचे उड़ान भरकर ले जाया जाता है। जब टैंक छोड़कर वो वापस आने लगे तो सेसल विवियन पार्कर ने देखा कि 16 टैंक भेजे गए थे लेकिन उतारे गए सिर्फ 15। वो इस ओर ध्यान दे ही रहे थे कि उन्हें अपने एयरक्राफ्ट की राइट विंग झुकती हुई महसूस हुई। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो टैंक उनके एयरक्राफ्ट में ही रह गया है। यही नहीं, टैंक पूरी तरह भरा हुआ भी था और उसका वो हुक खुला हुआ था जो फायर करने के समय खोला जाता है। सेसल विवियन पार्कर अपने एयरक्राफ्ट में खतरनाक टैंक के साथ थे, पर उन्होंने न घबराते हुए अपने सभी साथियों को पहले लैंड करने की सलाह दी। सेसिल विवियन पार्कर ने जैसे ही एक टैंक खुली हुई अवस्था में उनके एयरक्राफ्ट में होने की बात कही तो नीचे खलबली मच गई। उन्हें लैंड था और उसका वो हुक खुला हुआ था जो फायर करने के समय खोला जाता है। सेसिल विवियन पार्कर अपने एयरक्राफ्ट में खतरनाक टैंक के साथ थे, पर उन्होंने न घबराते हुए अपने सभी साथियों को पहले लैंड करने की सलाह दी। सेसिल विवियन पार्कर ने जैसे ही एक टैंक खुली हुई अवस्था में उनके एयरक्राफ्ट में होने की बात कही तो नीचे खलबली मच गई। उन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया और एक बार फिर वापस उनके एयरबेस जाने का ऑर्डर दिया गया। अब मजबूरी ये थी कि वहां भी केवल एक रनवे होने और उसके व्यस्त होने के कारण आखिर उन्हें दूसरी जगह एयरक्राफ्ट उतारने की सलाह दी गई। अपनी सूझबूझ, बहादुरी और धैर्य का परिचय देते हुए सेसिल विवियन पार्कर ने बड़ी सावधानी से बिना कोई नुकसान पहुंचाए एयरक्राफ्ट को लैंड किया। जांच के बाद ये पता चला कि कुछ तकनीकी खामियों और हवा के दबाव के कारण टैंक का हुक खुल गया था। ये सेसिल विवियन पार्कर की सूझबूझ का ही नतीजा था कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए सेना की संपत्ति की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई।

0: जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर
0: ऐप सहित 558 किलोहर्ट्ज वर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 7:30 वाजलेत। आता ऐकूया शेतकरी बांधवांसाठी कार्यक्रम माझा आभार माझा शिवार।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म फाइटर से। आवाज़ें विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी मौलिक की थी। गीत के बोल कुमार, मेलोडी और विशाल ददलानी के थे। संगीत विशाल और शेखर का था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
1: संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज।

0: मेरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया, 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and

0: सोसाइटीज फ्यूचर।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर

0: एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued.

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से। आवाज़ें यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की थी। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत पीयूष शंकर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लूडो से। आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से। आवाज़ें सचेत टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचिन जिगर का।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

दोस्तों बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणाघाट यानी पश्चिम बंगाल में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका है तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

दोस्तों बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे। कभी

उनकी बेटी बोस की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के छाया गीत में गुलजार के अशार और उमी के नगमे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूँ तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी और खामोशी का हासिल भी। एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है।

0: आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं। कब आते हो, कब जाते हो, दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।
1: बस रे।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम, जैसे जंगल में शाम के साए जाते जाते सहम के रुक जाएं। मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक धूल ही।

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रूस सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिजर की रातों में ये देखो तो क्या होता है।

बस एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की कीली कीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं, थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लुभान चल रहा है।

0: फिल्म शक, संगीत वसंत देसाई का।
1: खाली हाथ शाम आई
0: है। फिल्म इजाजत, पंचम का संगीत।
2: चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।
1: अब के सावन बरसे।
0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम। फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छाएगी इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

लिखे चोखा तुझे।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता

0: तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह के त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
1: Recall